हे शब्द धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज शांति दे पुंज बाणी दे बोहित

पूरे गुरु दा मिलाप होया, उदी बख्शिश होई है। जमदूर मेरे नालों हट गए ने, उन्हां दा सहम मैनू हुण सता नहीं रहा, ओ भज गए ने मेरे कोलों।

सब कुछ अर्पण कर। पर मेरे पातशाह कहंदे ने उना दे तन मन अर्पण करी जिन्हां ने अपना तन मन वाहिगुरु दे अर्पण कीते। फिर उन ओ परचून दे मालिक नहीं हुंदे, ओ तां थोक दे व्यापारी हुंदे। थोक विच पदार्थ देंदे ने, लोकां नूं वंडदे हन, पर अपना सब कुछ वारिया हुंदा वाहिगुरु तों।

ऐसे महापुरखां दे सिर्फ दर्शन ही कीतियां ओ पाप मुक जांदे हन खत्म हो जांदे नहीं।

मनुख भगती करे जन्म मरण तो छुटकारा नहीं मिलता। पर पातशाह कहने ने बड़ा सुखैन तरीका है महापुरुषां दे चरणां दी पूजा कर।

0: जल बिन कुंभ न हो, ज्ञान का बधावन रहे गुरु बिन ज्ञान हो, ओ गुरु बिन ज्ञान हो।
1: बाबा जी ताड़ी ऐस छबील रियास रहे साडा पेंडा कटिया जांदा
2: आसरा उस दादार दा, मैं देख सेवादार हां।
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो।
2: आप उधर ले पी, ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया,
2: अब मोरे जलत राम जल पाया, राम अधिक तन जलत बुझाया, मन मारण कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असी भी ओवे चल लग रहे हैं, तुहाड़े कोल ते हजारे यात्री आते जाते, शायद तुहानू कुछ पता हुए।
2: कादा पता?
4: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी, पानी दी छपड़ी आदि कंडे ते बेरी दा दरख्त ते बेरी ते कां बैठते ने।
2: छपड़िया ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं।
4: नहीं बाबा जी आज बेरी ते इक्को ही होएगी, जे तू कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
2: चिट्टे हो उड़ते जांदे ने?
3: हां बाबा जी, ते नाल ही आवाज आ रही सी,
4: कागू हंस करे।
2: कागू हंस करे, कागू हंस कर, ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो सिर्फ गोंदवाल चले जाओ, उत्थे गुरु अमरदास जी का दरबार है, गुरु नानक की अलाई बाणी का सोमा।
4: गुरु अमरदास?
2: हाँ बेटी, उन्होंने हर चीज का ज्ञान है, उन्होंने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वल ले जाएंगे जिस मंजिल तुहाडे दिल च तांगे।
4: किन्नी दूर है गोइंदवाल?
2: इथों थोड़ी दूर दरिया का पत्तन है, उत्थे बेड़ी पैंदी है, बस दरिया पार दे गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी असी चलने हैं।
2: परमेश्वर भली करेगा। कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।
0: पुट परी दायूज साज सुबह नवाज गुजार, जो सिर साई नानी सो सिर कफ उतार, जो सिर साई नानी सो सिर की देखाए, उन्ने पैठ जलाए बालन संदे थाए, बालन संदे थाए।
5: ओ साहब जी की गल है पहला तुसी ने गया दिता?
4: असी किस तरह जानते, सोचते हैं पहले पूछ लिया होंदा।
5: की पूछना सी?
4: सारे मुसाफिरों ने तुहाडी सेवा च कुछ ना कुछ भेंट किया है, पर असी साडे कोल ना दिल चौल ना धर्म ना तमड़ा।
5: ओ चलिए पहने, मैं कोई कम कमाइया लिए तो नहीं करता, मैं तो गुरु के दर्शन आई हूं संगतां की सेवा करके अपना जन्म सफल कर रहा।
4: फिर भी तुहाडियां लोड़ां?
5: मेरिया लोड़ां? मेरिया लोड़ां तो खुदावंद पूरियां करता है, तो होर मैनू चाहिए भी की जो कुछ मैं दे जाते ने जाके गुरु के दरबार च चढ़ा दिना, दिन वेले बेड़ी चलाना तो राति लंगर चो ढिड भर के बाहर थले दसो जाना। मैं उगन हारा कोगन पले नहीं।
4: तन हो तुसी?
5: तन ते मैं नहीं पैना, तन तो गुरु महाराज है जरा सब नू अपनी मिठी बाणी का अमृत पिलांदा है, और दर ते जाओगे तो उन्हू कहना जिन्हें सानू ए सागर पार कराया उस अवगन हारे नू इस पाव सागर तो पार उतारो।

देह रा मसीत सोई पूजा ओ निवाज ओही। देहरा और मसीत पूजा अते निवाज इन्हां नूं एक ही समझो, क्योंकि जेड़े इन्हां विच फर्क समझदे ने उन्हां दे मनां विच ही नफरत रहिंदी सदियां तों।

झगड़े वधाने वाले हो, अपने मन में एक गल सोचो, एक नैन एक कान, सारियां कोल इको वर्गियां अखां, इको वर्गा नक है, इको वर्गा शरीर है, सारियां कोल अखां ने, सारियां कोल कान, सारियां कोल शरीर, सारियां कोल बोली, खाक कहंदे ने मिट्टी, आतिश कहंदे ने अग, आप कहंदे ने पानी, परमेश्वर ने

साहब जी कहते ने चाहे कोई हिंदू है मुसलमान है सिख है ईसाई है संसार विच जितने भी इंसान हैं सारे पांच तत्वों तो बने हैं।

कैसा सुंदर उपदेश कर रहे हैं। अल्लाह अपेक सोई कुरान ओ कुरान ओ ही हिंदू कुरान पढ़ता है, मुसलमान कुरान पढ़ता है, मुसलमान अल्लाह नु याद करता है, हिंदू राम नु याद करता है। ते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे ने अल्लाह दा नाम लेन वाले है, कुरान शरीफ पढ़न वाले है, मुसलमान नु ए उपदेश, हिंदू नु की उपदेश है। कुरान पढ़न वाले हिंदू है, राम नु याद करन वाले हिंदू, अपने मन विच ए विचार कर। एक बंदा मसीत विच बह के निवाज पढ़ता है, वो अपने अल्लाह नु याद करता है। एक ब्राह्मण मंदिर विच बह के पूजा करता है, वो अपने परमेश्वर नु याद करता है। टंग दोनों दे अलग ने, एक निवाज पढ़ता है, एक पूजा करता है, पर ये सोचे है दोनों दा मकसद की है। मुसलमान अल्लाह नु याद कर रहे है, हिंदू अपने राम नु प्या याद करता है, मकसद दोनों दा।

और हिंदू और मुसलमान दो वटियां कौमा और दो नादाई झगड़ा सदियां तू चलिया आ रहे है। पर गुरु नानक दे घर दा उपदेश की है कि जेड़े लोग रब दे नां ते लड़दे हन ओ पुल्ले और पटके हुए लोग हन। भाई साहब जी बयान कर दे।

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक नहीं, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते। मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस हिंदू पूजते ने, अगे भाई साहब की कहते हैं।

वेदा और कतेबा का उपदेश भुला दिता है और दुनिया जिहड़ी है देखो लालच विच फस के शैताना दे राह ते चल पई है।

सच किनारे रह गया, सच एक पासे रह गया। ब्राह्मण और मुलाने आपस च पै लड़दे मरदे ने। भाई साहब जी कह रहे ने, अगर इंसान सच नू ना छड़े, सच पल्ले रखे।

उपदेश भी यही हो रहा है कि भाई क्यों लड़दे हो, इंसान रब का रूप समझो। ते जेड़े लोग शैताना वाला काम करते ने उन्हां दे राह छड़ दियो। भाई साहब जी बयान करते हैं मंदिर ढा के मसीतां बनाईयां ने मुगलां ने, पर की मंदिर ढा के मसीत बनाने वाला अपने अल्लाह नू प्यारा लग सकता है, कदी नहीं लग सकता। इत्थे एक गल याद रखनी, हर कौम दे विच पैड़े बंदे हुंदे हैं, पर सारियां कौमां माड़े कह देना ये ठीक नहीं। हर कौम विच कोई ना कोई पैड़ा बंदा जरूर हुंदा है, पर सारी कौम नू माड़ा कहना ये इंसाफ नहीं। भाई गुरदास जी बयान करते ने वो गल्लां जिहड़ियां इतिहास है और जो सच्चाई

निवाज और भाई साहब जी कह रहे ने मुसलमाना विच रोजे ईद निवाज ए जरूरी कर दिते और संसार दे विच जेड़े मुसलमान हैं।

इस पौड़ी दे विच भाई गुरुदास जी ने इस्लाम धर्म दा जो असूल है उहदे बारे दस्या कि मुसलमान वास्ते रोजे ईद निवाज जरूरी इन्हां दे पीर पैगंबरां दा ए उपदेश। पर जिस वेले मुगलां दा राज होया हिंदुस्तान ते तां औरंगजेब जिहड़ा कि एक जालिम बादशाह सी उसने ए हुक्म कीता सी कि हिंदुस्तान विच हिंदू धर्म नहीं रहन देना। तां पंडित कृपा राम ने आनंदपुर साहब आके गुरु तेग बहादुर साहब दे दरबार पुकार कीती, साडे हिंदू धर्म दी रक्षा करो। ता गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना सिर दे के हिंदू धर्म दी रक्षा कीती। और गुरु नानक साहब दे अवतार तो पहला भी ठाकुर द्वारे ढाए जांदे रहे भाई गुरु

दिल मोम वर्गा होना चाहिए, जिस तरह मोम पिघलती है और रोशनी देती है, इसे तरह ए मुसलमान तू भी किसे न दुखी देखे ते तेरा मन भी मोम दी तरह पिघल जावे। आप भावे दुखी हो पर दूसरे नु सुख दे।

और दूसरे पास से ब्राह्मण ने उपदेश किया, कहे कबीर जो ब्रह्म विचार सो ब्राह्मण कैयत है हमारे, जिड़ा ब्रह्म दी विचार करे, जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़िया रवे असी ते ओनू ब्राह्मण कहने हैं, क्योंकि जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़ गया वो फिर जिधर भी जिस पासे भी देखेगा वो जिधर भी देखेगा ओनू ब्रह्म ही नजर आवेगा। जे हर पासे ब्रह्म है, हर पासे परमेश्वर है, ते फिर किदे नाल झगड़ा ते किदे नाल लड़ाई, किदे झगड़े खत्म हो जाएंगे। और गुरु घर का उपदेश है, फिर ते इंसान ही हुई तो वेगा ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई, कोई बेगाना नहीं, कोई पराया नहीं।

गुरु साहबान ने, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जितनिया भी लड़ाइया लड़िया वो किसे फिरके दे खिलाफ नहीं, वो जुलम दे खिलाफ लड़ाई सी। ते जुलम करन वाले दा कोई धर्म नहीं होंदा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा इतिहास पढ़ के देखो, उन्हां दे नाल हिंदू और मुसलमान पठान तक साथ दे के जुलमिया दे नाल लड़िया करदे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की फौज विच हिंदू भी सन, मुसलमान और पठान भी सन, जिन्हां ने समझिया कि ए इंसानियत दे भले वास्ते लड़दे ने। हथियार दो बंदे चुकते हैं, एक जुल्म करन वाला और एक जुल्म नूं रोकण वाला। जिहड़ा जुल्म करदा है उहनूं फिटकारां पैंदियां ने, ते जिहड़ा धर्म की रखिया वास्ते हथियार चुके, लोकां दे भले वास्ते हथियार चुके, जुल्म दे टाकरे वास्ते हथियार चुके, दुनिया हमेशा उन्हां दी पूजा करदी है। तो आओ भाई आपां भी महापुरुषां दे राह ते चलिए, और ये जिहड़ा उपदेश है इस नूं अपने दिल विच थां दईए, उपदेश ते चलण दी कोशिश करिए। गुरु साहिबां दा उपदेश अणख नाल जीवना, धर्म दी किरत करनी, नाम जपना और वंड छकना, जिहड़ा इन्हां गल्लां नूं मन लवे।

मैं अनजान हां, मैनू तैरना नहीं आउंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते।

सतगुरु कहंदे ने जे मालिक नूं मिलना ही ते बच्चे वर्गा हो जा। इहदे विच कोई मेर तेर नहीं। कदे बच्चे ने किसे दूजे बच्चे नूं पुछिया, आ छोटे छोटे क्लास विच पढ़दे ने, अजकल ते टाइयां टाइयां तिना तिना सालां दे दाखल करवा दिते। कदे किसे दूजे धर्म दे बच्चे नूं किसे ने पुछिया भी तेरा धर्म केड़ा है, तेरी जात केड़ी है, तेरी गोत केड़ी है। ना, आपस विच प्यार नाल हसदे ने खेड़दे ने। सतगुरु कहंदे ने जे रब नूं मिलना ही ते बच्चे वर्गा पुंजा। ये बड़ा भोला है, बड़ा चंगा है।

नानक बिना जहान दी दिशा कोई ना, मशरक मगरिब जनूब शुमाल नानक, कदे काशी ते कदे प्रवेश मक्के, बनया सारयां दा सांझी वाल।

0: सुर देख दे,
1: पाट गए ने कागज तुसा दे लेख दे, हार गए तुसानू समझौ दे कल दे, देखांगे तसीरे तुसी किवे नहीं चल दे, पाप दिया पंडा ने जलाद बन दे, साहिबजादे इन

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां।

लगी बरसन लक्ष्मी। बाबे दा आना सुन के सारे लोग उधर नु आ गए जिधर गरीब नवाज पातशाह बैठे सन। लगी बरसन

अपनी शक्ति नाल ओ जेड़े लोटे विच लोग पैसे पा रहे सन ओ लुका दिता। भाई साहब भाई गुरदास ने बड़ी

गई भगत भोले। जिस वेले भगतिया ने तकिया भी जिले विच लोग माया पा रहे ने, ओ लोटा किधर चला गया? ते भाई साहब कहंदे ने ओ भगतिया नू ओ भगत पौनी भुल गई, ना उतार रहा ना उराग रहा।

खादी खुण सुजुगी सिरा। जिस वेले बंदे नू अपनी हार हुंदी दिस पवे ना, ए आम बात है, फिर वो झगड़े ते उतर आंदा है, और तां पेश जांदी कोई नहीं। जोगियां ने गुरु नानक बाबा नाल बहस करनी शुरू कर दी। भाई साहब भाई गुरदास जी

नानक आखे भंगरना। बाबे ने जवाब दिता, हे भंगरनाथ, तेरे गुरु ने तेनू मत नहीं दिती,

मैं आप दे नाल प्रशादा नहीं छक सकता। आपने गुरु धारण नहीं कीता, कहंदे हन निगुरे दा नाओ बुरा। कलेजे दे विच तीर लगा, उदास चित अपने घर वल नू पुजे। रात सारी नींद नहीं आई, ते अमृत वेला होया कि सुनदे हन के नाल दे करों भरा दे करों उना दी नू राणी जपजी साहिब दा पाठ कर रही है। ज्यों ज्यों पाठ सुन

उस परमात्मा दा चानना हुंदा जांदा मन टिका विच आ गया। नूरानी कोलों पुछया जा करके, बच्ची ए जो पाठ कर रही है ए किसदा उचारण कीता होया है? अगो जवाब मिलिया, पिता जी ए ते बाबा नानक जो कल युग दे अवतार आए संसार ते उना दी पवित्र बाणी है। उना ने कहा, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। मानो ज्ञान हुंदा गया। बच्ची दे प्रवचन सुने बाबा अमरदास जी चैन नाल कर नहीं बैठे, उसे वेले जा गुरु अंगद सच्चे पातशाह दे चरना ते मत्था टेकया। अगों गुरु अंगद देव जी महाराज ने प्यार कीता, सत्कार करन लगे ते बाबा अमरदास जी कहन लगे, गुरु महाराज मैं अज कुड़म बन के नहीं आया। मैं जानदा हां कि आप मेरे छोटे भरा दे सदके मेरा सत्कार करना चाहुंदे हो, पर मैं ते अज दास बन के आया। अज ते मैं अपनी झोली खैर पवान आया हां, मेरे ते कृपा करो, मैनू अपना सेवक बना लवो। गुरु अंगद देव जी कहन लगे, आप ते मालिक हो, घर दे मालिक हो, आए हो ते गुरु नानक दे घर दी सेवा करनी शुरू कर दे। देख दे देख दे बाबा अमरदास जी सारा दिन संगत दी सेवा कर दे, लकड़ा टोन दे, लंगर दे विच प्रशादे पकांदे, संगतां नूं छकांदे ते फिर गुरु महाराज दी भी सेवा कर दे। रात पै जांदी ते सारे सेवक सौ जांदे ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ए गागर लैके ब्यास वल चल पैंदे। बाबा अमरदास जी एक दिन जदों ब्यास तो गागर चुक के पुठे पैरी आ रहे सन ते जुलाही दे ताने पेटे नाल पैर दा अंगूठा लग गया, डिग पे। आवाज आई अंदरों जुलाही ने किया के कौन हो सकदा है? जुलाहे ने भी किया कौन हो सकदा है, ते जुलाही ने फिर कह दिता, होवेगा ओहो ही अमरू ने थावा। कहण दी देर सी, इधरों अंतरयामी पातशाह गुरु अंगद देव जी महाराज नू अंतर ध्यान होए सन, जेड़े पता चल गया कि अज मेरा सेवक जिसनू ने थावा किया है, इतनी सेवा करन वाला, करड़ी सेवा करन वाला जिसनू निथावा किया है, उसनू ते निथाविया दे थाम होना चाहिदा। बस भगती परवान होई, सेवा परवान होई ते ज्यों ही आ करके बाबा अमरदास जी गुरु अंगद देव जी नू इशनान कराया ते इशनान

मंडली नजर आ गई। ऐसी मंडली जेड़े कई चिरा तो अनेका दिना तो परमेश्वर दी आस विच बैठे सन, भुखे प्यासे के परमात्मा दर्शन देवेगा। ते जे परमात्मा साडे लई कोई भोजन दा उपराला करेगा ते तां ही छकांगे। गुरु नानक सच्चे पातशाह दी निगाह पै गई। बालपन विच ही बाबा नानक संतां दी मंडली विच जा बैठे, सिमरन ते बैठ गए, भजन सिमरन की

करके अनाज लियांदा, लिया करके आप पकाया ते पका करके सारे साधुआं नू भोजन छकाया, पानी पिलाया ते उन्हां नू तृप्त कीता।

पैसा पाई गुरुदास जी ने। चात मारी गुरु रामदास सच्चे पातशाह जीवन विच ते जीवन विच

प्यार नाल, प्रेम नाल, इतना सिमरन कीता कि मानो उस परमात्मा दी जोत नू हरी मंदर दे विच टिका देता। ते पाई साहब भाई गुरुदास जी कहंदे ने जैसे सत मंदर

देहरा मसीत सोई, पूजा हो निवाज होई। देहरा और मसीत, पूजा अते निवाज, इन्हां नूं एक ही समझो, क्योंकि जेड़े इन्हां विच फर्क समझदे ने उन्हां दे मनां विच ही नफरत रहिंदी। सदियां तों

कुरान ओ कुरान ओ ही हिंदू कुरान पढ़ते है, मुसलमान कुरान पढ़ते है, मुसलमान अल्लाह नु याद करता है, हिंदू राम नु याद करता है। ते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे ने अल्लाह दा नाम लेन वाले है, कुरान शरीफ पढ़न वाले है, मुसलमान नु ए उपदेश, हिंदू नु की उपदेश है? कुरान पढ़न वाले हिंदू है, राम नु याद करन वाले हिंदू, अपने मन विच ए विचार कर। एक बंदा मसीत विच बह के निवाज पढ़ता है, वो अपने अल्लाह नु याद करता है। एक ब्राह्मण मंदिर विच बह के पूजा करता है, वो अपने परमेश्वर नु याद करता है। टंग दोनों दे अलग ने, एक निवाज पढ़ता है, एक पूजा करता है, पर ये सोचिए दोनों दा मकसद की है? मुसलमान अल्लाह नु याद कर रहे है, हिंदू अपने राम नु प्या याद करता है, मकसद ते दोनों दा

ब्राह्मण शूद वैस और हिंदू और मुसलमान दो वटियां कौमा और दोना दाई झगड़ा सदियां तू चलिया आ रहे है पर गुरु नानक दे घर दा उपदेश की है कि जेड़े लोग रब दे नां ते लड़दे हन ओ पुल्ले और पटके हुए लोग हन भाई साहब जी बयान कर दे चार वर्ण चार मजहबां

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक नहीं, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते। मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस हिंदू पूजते ने, अगे भाई साहब की कहते हैं।

सच किनारे रह गया, सच एक पासे रह गया। ब्राह्मण और मुलाने आपस च पै लड़दे मरदे ने। भाई साहब जी कह रहे ने, अगर इंसान सच नू ना छड़े, सच पल्ले रखे

इस पौड़ी दे विच भाई गुरदास जी ने इस्लाम धर्म दा जो असूल है ओदे बारे दस्या कि मुसलमान वास्ते रोजे ईद निवाज जरूरी इन्हां दे पीर पैगंबरां दा यह उपदेश। पर जिस वेले मुगलां दा राज होया हिंदुस्तान ते ता औरंगजेब जिहड़ा कि एक जालम बादशाह सी उसने यह हुक्म कीता सी कि हिंदुस्तान विच हिंदू धर्म नहीं रहन देना, ता पंडित कृपा राम ने आनंदपुर साहब आके गुरु तेग बहादुर साहब दे दरबार पुकार की थी, साडे हिंदू धर्म की रक्षा करो, ता गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना सिर दे के हिंदू धर्म की रक्षा की थी। और गुरु नानक साहब दे अवतार तो पहला भी ठाकुर द्वारे टाए जाते रहे भाई गुरु

वड़े वड़े राजे, वड़े वड़े नवाब, वजीर, इन्हां ने अपना की काम बना लिया। राज भाग मिल गया, लोकां नूं आपस विच लड़ाना, और जद भी पता लगना किधरे सोहनी औरत है, उस नूं हथियाण वास्ते हजारां बंदियां नूं लड़ाई दे मैदान विच मरवा देना। राजियां दा, वजीरां दा, नवाबां दा ये काम रह गया, औरतां वास्ते लड़ाई झगड़े, हजारां लोकां दा खून वहा देना एक औरत वास्ते, पापे दा वरतिया वरतारा, इतना पाप हो गया। रब दे घर नूं ढा के ते फिर कहना कि मैं धर्मी हो गया, नहीं। भाई साहब जी कह रहे ने कि देखो ये नाराजियां महाराजियां दा वजीरां दा की कम बन गया।

और दूसरे पासे ब्राह्मण ने उपदेश किया, कहे कबीर जो ब्रह्म विचार सो ब्राह्मण कैयत है हमारे। जिड़ा ब्रह्म दी विचार करे, जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़िया रवे, असी ते ओनू ब्राह्मण कहने हैं, क्योंकि जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़ गया वो फिर जिधर भी जिस पासे भी देखेगा, वो जिधर भी देखेगा ओनू ब्रह्म ही नजर आवेगा। जे हर पासे ब्रह्म है, हर पासे परमेश्वर है, ते फिर किहदे नाल झगड़ा ते किहदे नाल लड़ाई, किहदे झगड़े खत्म हो जाणगे। और गुरु घर दा उपदेश है, फिर ते इंसान इहो ही कहेगा, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कोई बेगाना नहीं, कोई पराया नहीं, किहदे नाल लड़ा।

एक वर्ग का शरीर, एक वर्ग की बोली। इंसान का शरीर हड्डियां मांस का बने, अंदर परमेश्वर की जोत, अल्लाह का नूर कह लो, परमेश्वर की जोत कह लो, वाहेगुरु का निवास कर लो, पर उदो हैरानगी होंदी है कि जद इंसान इंसानियत नु भुल के एक दूसरे उत्ते जुलम करदा है। ताकत मिले ते ताकत नु भले पासे लाना चाहिदा है। इंसान नु इंसान दा घर नहीं साड़ना चाहिदा। इंसान नु इंसान प्यार करे ता ही इस संसार विच आया उहदा सफल होवेगा।

गुरु साहबाने, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जितनिया भी लड़ाइया लड़िया वो किसी फिरके के खिलाफ नहीं, वो जुलम के खिलाफ लड़ाई सी। ते जुलम करने वाले का कोई धर्म नहीं होता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतिहास पढ़ के देखो, उन्हां दे नाल हिंदू और मुसलमान पठान तक साथ दे के जुलमिया दे नाल लड़िया करदे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की फौज विच हिंदू भी सन, मुसलमान और पठान भी सन, जिन्हां ने समझिया कि ए इंसानियत दे भले वास्ते लड़दे ने। हथियार दो बंदे चुकते हैं, एक जुल्म करन वाला और एक जुल्म नू रोकन वाला। जिहड़ा जुल्म करदा है उहनू फिटकारां पैंदियां ने, ते जिहड़ा

तेरे मन विच तांग होवे के मैं जाके तेरे दर्शन करा। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी जिन्हां ने 12 साल सेवा की थी। 72 साल दी उम्र विच बाबा अमरदास जी जदों गुरु अंगद देव पातशाह दे कोल आए ते जदों दर्शन कीता ते मन मन गया। आ मन जिथे मन्ना हुंदा ना ओ उथे इक नजर ते ही मन जांदा, पहली नजर ते ही मन जांदा। जदों बाबा अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी दे दर्शन कीते आख्या मैं गुरु दी पाल कर रहा सां ते अज मैनू गुरु प्राप्त हो गए। उस दिन तो बाद बाबा अमरदास जी अपने घर नहीं गए, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी सेवा विच लग गए। रोज गागर दी सेवा करनी, खंडूर साहब तो गागर लैनी, 5 मील तुरदे हुए ब्यासा नदी।

पहले पैरे आपनी उठ के तीजे पैरे उठ के तुर पैण, क्योंकि पहले दो पैर आप कीर्तन नाम विच जुड़े रहिंदे, ते जदों तीजा पैर हुंदा।

उल्टी प्यारी टुरना किते गुरु सच्चे पातशाह वल मेरी पिठ ना हो जाती। साथ सगत बोलो श्री टुरते हुए पिछली प्यारी।

गुरु पातशाह इतना हूं पिट हो रही है, माफी दे देना। ते फिर व्यासा वाल तुर पे, गागर जल्दी भरी सिर ते चुकिया। अज एडा मीह पै रहा है, जखड़ चुल रहे हैं।

सच्चे पातशाह चुक चुक जा रहे सात सगत बोलो श्री, क्योंकि जितना आ फल लगता है टैणी नू और टैणी उतनी चुकती चली जानी है। एडी सेवा करके 12 साल सेवा कीती गुरु अमरदास जी ने, ते फिर की होए गुरु नानक दा रूप बन गए सात सगत।

सारे फलां दी उस नूं प्राप्ति होवेगी। नितनेम विच भाई फर्क न पवे, इस वास्ते बेशक चखड चलदा होवे, मी बसदा होवे, ए ख्याल रख तेरी सेवा और तेरे नितनेम विच फर्क न पवे, तां बख्शीशां दा हकदार होवेगा। गुरु रामदास सच्चे पातशाह।

के निर्जुन रूप हो, के निर्जुन पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमाल जावे गोर घर देखी कुल गावे तेरा नाम है। पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमाल जावे गोर घर देखी कुल गावे तेरा नाम है। जी दुख दुख सत पुन सत लगे तक बजा

0: तब इस तुक नु गायन करो और सिंह दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोट महला
1: चौथा
0: चौथा सब मिलके करो कीर्तन।

रोज अरदास करदा सी, ऐ परमात्मा आओ मेरे हिरदे दे थड़े ते बैठो। बेनतियां करदा रहा। एक दिन परमात्मा ने बेनती सुन ली, आ गए, कह लगे खोल भाई बुआ तेरे हिरदे दे थड़े ते बैठी है। जां बुआ खोलिया, इस हिरदे दे सिंघासन ते बहुत भीड़ कठी हुई हुई, किधरे ईरखा बैठी है, किधरे क्रोध बैठा है, किधरे होमे, किधरे लोभ, सारा थड़ा भरिया होया। परमात्मा ने पूछा बिठाएगा किथे, थड़ा तो तेरा खाली नहीं, एक वस्तु नू कढेगा तां दूजी नू पाएगा, मैनू बिठाण लई किथे था, थड़ा ते सारा भर के रखिया होया। कह लगा लै ए तां गल भुली गई सी। आया क्रोध दी बांह फड़ी बाहर छड़ आया, फिर आके काम नू बाहों फड़िया, गलों फड़के बाहर छड़ आया। जामुड़

नाम सिमरन तो बिना इंसान ने काम ही कुत्ता है। आख्या कहने ने जून पोगरे बिन सिमरन भय कुकर काम।